ठाकरे सौ खाते में सो तुम ठाकरे दिसता तनिया मैं उन्हें दिसता सच आखते हो हां तनिया सच आखदा ठाकरे जी तुम मैनू दिसते हो इसका मतलब तुम तलोचन भी दिसते हो नहीं तनिया मैं भैड़िया अखा वाले नहीं दिसता जिन्हों का मन होर भुख होर हो मैं नहीं उन्होंने दिसता फिर भगवान जे तू मेरे को रहना है तो फिर तुम त्रिलोचन भी दर्शन देने पैणगे तनिया नहीं यह झूठा है फरेबी है मकार है हेरा फेरी करता है मेरे नाम से नहीं प्रभु जे ए ना हुंदा तो मैनू तेरे दीदार नहीं होने हुणे हुण भगवान तन्ने के कारण करके त्रिलोचन भी दर्शन देने पे त्रिलोचन का भी दर्जा भगतों में आ गया कि करके किसी ने संगत की संगत का दर्जा की होया फिर तन्ने ने मंगया कि ऐना कुछ मंगया कोई भी संसारी ऐना कुछ मंग नहीं सकया एक ताजन तुरी चंगेरी करके कहे चंगी जंत न ले दे मंगी पातशाह घोड़ी वह होवे जिड़ी किसी को हो बिस्तर न हो जरा बादशाह नसीब न हो स्त्री एडी खूबसूरत हो जब रोटी लैके आवे तो मेरा थके मलक जाए देख के

बहुत प्रसाद करावे पाठ करावे, पर जे निंदा हो गई ओ भी किसे महापुरख दी। ते कोई भी कीता होया कर्म फलीभूत नहीं हुंदा। जेड़ा मनुख इस भयंकर रोग विच फस

मोहम्मद बिन तुगलक ने नामदेव नु पुछया, ऐ नामदेव मैं हिंदुस्तान दा बादशाह, तू मेरे को डरदा नहीं, किदे भरोसे ते तू अपना जीवन बताना है।

धरती दी पालना करने वाला ऐ बादशाह भगत लोग उस गोपाल राय की सेवा करते ने अकुल निरंजन जिदी कोई कुल नहीं।

सराय चा बड़ा वड़ा शामियाना है तंबू है केड़ा है। ऐ बादशाह तू अपनी वास्ते तंबू लवाना है।

सरायचा है, तंबू है, इंसान जहाजा ते चढ़ लवे, राकटा ते चढ़ लवे, कितना भी यतन कर लवे, पर इस परमेश्वर दे तंबू विचू इंसान बाहर नहीं निकल सकता। ओदे घर विच बैकुंठ है, अते सपत लोक समान पूरी आले, ए जड़े पताल ने ए ओदे घर विच

मौत है, उस गोपाल राय दे कार खेड़ कर दिए, कदी किसे नु मार देंदी है, कदी किसे नु मार देंदी है। इस करके ओ जिड़ा मेरा गोपाल राय है, जिदे कार सूरज चंद्रमा दीवे तरह ने, मौत जिड़ी है ओ दे कार

महादेव नु छड़ दे नामे सर पर सोना ले नामदेव दे बराबर तोल के सोना ले ले पर भगत नु कुछ ना कहे।

कैद खाने पा दिता गया, सत घड़िया का समा दिता, पर सत घड़िया बीत गई। गऊ हाली तक जिंदा नहीं हुई, भगत जी आप बयान कर।

ऐ मोहम्मद बिन तुगलक बादशाह, मेरी प्रीख्या लैण दा तां फायदा है जे हुण तू भी सच ते चले, किसे नूं दुख ना देवे।

खुश होके भगत नामदेव ने बहुत सारा सोना चांदी भेट किया, पर नामदेव जी ने वो सारा सोना चांदी गरीबां च वंड दिता। आप तुर पए। बादशाह ने एक बड़ा कीमती दुशाला कह लो, सेज कह लो, बड़ा कीमती दुशाला सेज नामदेव वास्ते अपने दरबारियां नूं दित्ती। बादशाह ने दरबारियां नूं कहा, जिथे नामदेव जी बैठन ऐसे जा नामदेव नूं भेट कर देने, ते नाले मेरे वल्लों कहना कि बादशाह दी इच्छा है कि ऐसे जा किसे नूं दान नहीं करनी, ए वछा के तुसा आप उत्ते बैठना है। नामदेव जी तुर पए, नाल बादशाह दे दरबारी तुर पए। नदी किनारे भगत नामदेव जी बैठे ने।

भगत नामदेव जी ने उस वक्त नदी किनारे बैठ के ये शब्द उचारिया, जे गुरु दयाल हो जाए मुरार कहंदे ने कृष्ण भगवान ता कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाती। अगर गुरु दयाल हो जाए ता उतरे पार इंसान संसार सागर।

जे गुरु दयाल हो जाए देहोरा फिरे देवरा कहते मंदिर ता ओ पूरे पत्थर दे बने हुए मंदिर घुमा दिंदा नामदेव नूं जदों पंडता ने नीवी जादा समझ के मंदिर विचों कढ़िया सी ते नामदेव जी मंदिर दे पिछले पासे जाके बह गए सन ते परमेश्वर ने भगत बदले पूरा मंदिर घुमा दिता तो भगत जी कहंदे ने

दयाल हो जाए तो छापर छाई वो सड़े हुए घर भी बना देंदा है, क्योंकि नामदेव की छन सड़ गई सी ते परमेश्वर ने आप नामदेव की छन बनाई सी। भगत जी कहते ने जो दयाल हो जाए तो छापर छाई वो आप अपने प्यारियां दे घर बनांदा है।

बादशाह ने पूछया, भगत जी एक सहज ता मेरी है, ए बाकी सहजा कीमती किस दिया ने? ता नामदेव जी कहन लगे, बादशाह जदू कोई परमेश्वर दे नाम ते अपनी कमाई विचों कोई चीज दान करदा है, पेट करदा है दसां दी किरत विचों, ताओ दान कई गुणा फल के उन्हों मिलदा है। ए सारियां सहजा तैनू मिलनियां सन, पर तू दान करके शंका कीता, इस करके ए चीजा हुण तैनू नहीं मिलनी। ता बादशाह उस वक्त हाथ जोड़ के कहन लगा, भगत जी मैं भी बादशाह हिंदुस्तान दा, सारे लोग मेरे को डरदे नहीं पर तुसी नहीं डरदे। उस वक्त भगत नामदेव जी ने मलार राग दे विच ए शब्द उचारिया, सेवी ले गोपाल राय अकुल निरंजन। ऐ बादशाह तू दुनिया दा बादशाह अज है, कल खत्म हो जाएगा, पर जिड़ा साडा बादशाह है ओ परमेश्वर ओ गोपाल, ओ कदी खत्म नहीं होंदा, उन्नू कदी मौत नहीं आंदी। उसने दुनिया बनाई है, खंड ब्रह्मांड बनाए ने, उस गोपाल दी असी पूजा करदे हां, जिड़ा कदी मरदा नहीं किसे कोलों डरदा नहीं।

उस परमेश्वर दे घर की है, भगत जी ने बयान किया। जांचे कर निकट वर्ती अर्जन, ध्रुव प्रहलाद अम्बरीक नारद नेजे, सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बानवे हेला, एते जी जांचे हैं करी, सर्व व्यापक अंतर अरी, प्रणवय नाम दियो तांची आन, सगल भगत जांचे निशान। ऐ बादशाह, ओ परमेश्वर, इतना ब्यांत है, ए जो मैं दसे है, ए ता कुछ भी नहीं, सब कुछ होता है, ओ बनान वाला है, प्रणवय नाम दियो तांची आन। नामदेव आखद है, ऐसे गोपाल राजे दी असी शरण विच हां, ते सारे भगत सारी दुनिया ओदा ओट ते आसरा लैंदी है। इस करके भाई, राजे हो ताकतवर हो ता मान ना करो, क्योंकि उस गोपाल राय तों कोई भी वड्डा नहीं।

अकेडमी गुरुद्वारा बड़ू साहिब जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश दिया बीबिया दे ढाडी जथे दी इन्नी सेवा प्रवान करो। बुलाओ फतेह ते आखो गज के वाह।

की पवित्र वाणी साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की उच्चारण की हुई है। गुण गोविंद कायो नहीं जन्म आकारत की, कहो नानक हर पज मना जय विद जल को मीन। इन्हां सारे श्लोकों विच श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज सानू एक सुनेहा देना चाहते।

मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। मूर्ख बंदा माया दी खातर दिन रात नठिया फिरदा है, बई तू संगत विच नहीं आंदा जी, मेरा कारोबार इन्ना है, मेरे कोल टाइम ही नहीं होता, मेरा काम इन्ना है। ओए पलिया, जदों भुख नाल मरदा सी उदों तेनू गुरु चेते सी, उदों ते दोनों वक्त गुरु घर आके अरदासा करदा सी। हुण तेरा कारोबार वध गया, दात प्यारी विसरिया दतारा, देण वाला भुल गया, हुण तेरे कोल गुरु लई टाइम ही नहीं हुंदा। सतगुरु बाणी विच समझांदे ने, माया कारण तावी मूर्ख लोग अजान, ये मूर्खां दा काम है। सुख आंदिया भी देर नहीं लगती, जांदिया भी देर नहीं लगती। जे तेनू गुरु ने धन दिता है, कारोबार बढ़ा दिता है, सगों होर गुरु का धन्यवाद कर। क्यों अपना जीवन बिगाड़ रहा है? एक बार श्री रामचंद्र जी दरबार में बैठे सन, की तक रहे ने, एक कीड़ा दीवार ते चढ़ता है फिर थले डिग जाता है, ये वल देखी जाते ने, दीवार ते चढ़ता है फिर नीचे गिर जाता है। रामचंद्र जी ये वल तकी जाते ने ते फिर देख के ना हसन लग पे। कोल ऋषि मुनि बैठे सन, आखन लगे है की गल है, क्यों हसदे हो? आ देखो बई, कीड़ा दीवार ते चढ़ता है डिग जाता है, बई इहदे विच हसण वाली केड़ी गल है? इह ते हसण वाली कोई गल नहीं। श्री रामचंद्र जी आखन लगे, हसण वाली गल यह है, इस जीवन तो पहला ना ए एक राजा होंदा सी, दुनिया ते इहदा राज सी, बड़ा बड़ा राजा सी, इंद्र जिस दा नाम सी, इन्हें सिमरन नहीं कीता, दिन रात पाप कीते, ते हुण ये 84 लख जून दे विच पिया होया है, कीड़े दी जूनी विच पिया है, ते मैं हसदा ता हां, ऐ पलिया तेनू धन भी दिता, सोने महल भी दिते, घोड़े गड्डियां भी दिते, तू निरंकार नू फिर भी चेते नहीं रखिया, ते हुण देख ला किहड़े दुखां विच फसिया होया है। जे साडे कोल सुख चंगे ने ना, ते प्रभु नू भलाणा नहीं चाहीदा, सगों ज्यादा धन्यवाद करना चाहीदा है। नहीं ते जिहड़ा आण वाला जीवन है ना, दुनिया विच ते दुख पाना ही पाना है। जिहड़े सिमरन नहीं करदे, दुनिया विच भी दुख पांदे ने, घर दे कलेशां दे विच लड़ाइयां झगड़ियां विच फसे रहिंदे ने, ते जिहड़ा अगला जीवन हुंदा है वह भी खराब कर लैंदे ने, 84 लख जून दे गेड़ विच फस जांदे ने। नहीं बई, जे तेनू मालक ने सुख दिते ने ना, इन्हां सुखां दा आनंद भी माण, ते गुरु नू भी चित रख। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे, नीत नीत घर बंधिए जे रहना होए, बहुता कुछ उत्थे बनाईदा है जिथे पक्के रहना होवे, इत्थे तो पक्के नहीं रहना, एक ना एक दिन चला जाना है। जात मार, रिश्तेदारां वल, दोस्तां मित्रां वल, पिंड नगर वल किन्ने चले गए ने, ते तू किन्ना चिर बैठा रहेगा? फरीदा, किथे तेंडे मापियां, भई किथे ने तेरे मापे जिन्हां ने तेनू जन्म दिता सी? वो तेरे तो लद गए ने, चले गए ने, इस तरह एक ना एक दिन तू भी चले जाना है। जो सुख को चाहे सदा,
ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲਹਿ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇ, ਜੇ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 9ਵੇਂ ਮਹਿਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਬੈਠਿਆ ਕਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਬੇਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ।

नामदेव भगती करने वास्ते मंदिर विच आ गए। धर्म दे ठेकेदारां ने चुक के बाहर मारे। पंडतां ने आखिया तू नीवी जात विच एक शुद्ध ते मंदिर विच किवें आके बह गई। कहिंदे ने मोढे ते कमली पाई मंदिर दे पिछवाड़े जाके बह गए। परमात्मा अगे रोस कीता, हे परमात्मा

हे परमात्मा बस एक गल का ख्याल करी मैनू तू ना विसारी मैं ते तेरे अगे बेनती ही कर सकदा रोस कर रहे ने अकाल पुरख नाल हे परमात्मा जे तेरा नाम ही नहीं सी जप सकदा तेरा सिमरन नहीं सी कर सकदा तेरे घर ही नहीं मैं आ सकदा सी मैनू कानू इस जात विच भेजे किसी उची जात विच भेज दें तेरा नाम ते जपदा तेरा सिमरन ते करदा नीवी जात वाले नू नाम जपन का भी हुक्म नहीं ख्याल करियो इस समाज की हालत सी इस समाज के अंदर मंदिर विचों कढ़े हुए नामदेव नू धन गुरु अर्जन साहब ने आवाज मारी आ नामदेव तू मेरे को आ की होया तेनू मंदिर विचों कढ़िया गया मैं तेनू हर मंदिर विच बिठा दिना हाले के जोहरा फिर गया पर उन्हां जात अवमानिया दे मन फिर भी नहीं फिरे उथे दे उथे खलोते हंकारियां निंदकां पिट दे नाम देव मुख लाया हंकारियां वाल जात अवमानिया वाल पिट हो गई नाम देव नूं मुख सामने विखाया परमात्मा ने लेकिन उन्हां दे दिमाग उथे दे उथे खड़े उसे तरह दे उसे तरह ही हां कैसी कमाल दी गल है जी नामदेव हरिमंदर उदो भी बैठे सन नामदेव हरिमंदर अज भी बैठे हुए है किसी सिख की ताकत कोई आखे कि नामदेव जी तुसी परा हो जाओ मैं गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकना नहीं कोई कह सकता क्योंकि यह मान बख्शे गुरु अर्जुन साहब ने ते गुरु का दिता कोई मान खो नहीं सकता कोई लै नहीं सकता कैसी गल है उस वेले समाज विच ए हालत सी लेकिन धन गुरु अर्जन साहब ने अपने नाल बिठा ले अड़दा मिनिस्टर नाल कुर्सी बर्दाश्त नहीं करता वो कहना मैं ही बस उत्ते होवां मेरे नाल ना कोई बोवे पर धन गुरु अर्जन साहब ने ते अपने नाल कईयां नूं बिठाया एक रूहानी थाल तैयार कीता धन श्री गुरु ग्रंथ साहब दा रूहानी रूह दी खुराक 36 प्रकार का जिदे अंदर भोजन है जिन छा के मनुख तृप्त हो सकता है हालांकि नामदेव ने आवाज केड़ी दिती है

गल राम दे नां दी है, पर सतगुरु ने क्यों बुलाया? वो कह लगे मैं तेरी जात नूं आवाज नहीं दित्ती, तेरी जोत नूं बुला दे। जिहड़ी जोत इस गल दी गवाही कर रही है, सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले, उस तो बिना कौन बोल सकता है? फिर कहिंदे ने